0: आज मैं हर गाड़ी अगर 32 मिनट में दिवे राज्य गड़ और मगर दिन बाद जरे हिंदू ने मैं देखे प्रोग्राम गड़ में बाहर दक्कल दम मगर दम आलो की बड़े तिबम अन्ना को देंगे इत्तिमाए दुल है ओकन रखा तेरे कुर्म इर्दान फिर अलता की कब है और मैं ना मैं हर गोली फमीहर मोहम्मद हमद अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हमद किन हाल हो बाल
1: हम हाल हो तरमिद किन तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह बार रंग किन मौसम थे साहब
1: मेरा मौसम अब ये हाल है नंगे को थे ने मानस कनेगे
0: मैं ना बेर का दिन को नंदा हां
1: आ बेर
0: राज्य दे गाग गंड का देखा मौसम यहां यहां रंग वान कम बन गया तो बुद्ध हिसाब
1: से तो के तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह
2: अल्हम्दुलिल्लाह कब algo me de dakne podetva mona kudinge ijtimai dulahe kan rakkatre kuruma elidan fiol teki kubahi
0: kuba khial
2: kon kan fiol teki elidan
1: ta kudinge ijtimai ra dulahe kan rakkatar kuwon korambi kantat kaalan ka upare ekmaki nyaro bodu mona pakhuje alona nupne biskita kunne pasen namad kora kodba kne kudin mona ei war ye pe dulaha kon ফাসের নামাজ নামাজা কেমা গুলুয়া সিয়া কেউ নিনানি তারতিব তো নানে এওতক কন্ত করা কওনা আ গাডিং গাডে কন্ত কুরং আদাওয়ানে কুদিনা আনকা নামাজ আদ কোনা হাফসার কো তাস্তার কো দেন কেমা নামাজ গুলুয়া কেউ তারতিব গেনে পেনে দেন আনকা আগিও তো আর মেম কই মে দিহে পাহুন রাল পাহাদ কম কুদিন একু এর মে ফাড় গতি
0: ইতমা
1: গুলম মে আলো গুলম বে করন বড় মিটুনি দশি উমর বে ফন ইস্তর বে এ বে ফন কাল গে বাত কি বে ফন এ উন মানে ফরজ ভাই মে বা দিশি পনাল মুদিন ওয়াহ তা কে কাঞ্জা
2: അതുപോലെ തന്നെ കുതിങ്ങ ഇഷ്ടമായി ദുലഹക്ക നക്കാത്തിരി കുടുംബം എഴുതാൻ ഫിയവൾത്തേക്ക് കൊബാത്തോ അളകുമെങ്കിൽ മൗലുവാക്കി തിരുഫുണിന്റെ ഖിയാലത്തെ ഹിസാ കുറുമ്പ പി എസ് എം എൻ നോട്ട് കൊല്ലപ്പ ഫോണും കുളുവാണി തിന് തിനിൻ ഹത്തരെ സുമിൻ ഹൈ സുമിൻ ഹൈ മി നമ്പർ തെൻ ബുടെ തന്നെ കുതിങ്ങ ഇഷ്ടമായി ദുലഹക്ക നക്കാത്തിരി കുറുമ ഗേത്രേം വെസ് അത് സ്കൂൾ മാഹോളും വെസ് കന്തത്തൊക്കെ കുറിവിതാണെ മീ തന്നവണിതം വര ഗിനാൻ അളകുമെന്ന ബൈക്ക് വേദ മാഹിരും এব বিদালবে মিকুদিং না স্কুল থেরেং মি ইজতিমাই গুলুনতা বাদেহকো একুদিংগে দুলহেও কমগে ওয়াহক দেখে ওয়াহক দেতো কেম বুইমা একুদিংগে মি হাশিগনগে দুলহেও কম বেসকুর বিদান কান্দে তোগে ওয়াহক স্কুল থেরেং বেস বুনে দেবে ওয়াহক তব বেস মি হাম কেবাদেনগে দায়রা গুলু বাবে ফ্রম বিদালবা ওয়াহক তা আদি সেম তিবে ফ্রমগে খিয়াল তং হিসসা কুরবে নালুমেন গে নাম্বার কি তিনে তিরেং হাতরে সুমিং হাই

0: ठीक है, तेरे को मैं कुछ के वे सामा मामा में दे के वारा वारा लोबे वा कुछ का वाने का के ऐ शक्के से का मेनो मामा में ना वे सामा एक का निंगे ने एक का मैं को हो रहा को दिन वे स्वाने हामा मामा में दे के लोबे वा का बुनंग ये हामा लोबे वा का बुनमा की मामा में के हिता वे सामा वारंग उफावरे का गेनो आने का मैं मामा एक का निंगे नो बापा कैरी गए सादी आए लग दें ते भी को दिन दत्ता में कोको में बेबी में कैरी गए स्वाने हामा एगो तब बुनंगे मेद के प्रोग्राम गाइस हमा कोरिया वारा मोहेम वारा मजा बात के गे बहोरेंगे मम्मीत के प्रोग्राम फुरतम कुजका वाहक दक्कालम के कोरिंग दत्त ताणी वाहक के यते को दिन ना मेद के प्रोग्राम के वाहक के फिशुं गेनस्तेंगे पर रीते वाहक के मेद उसमें होती मा होरिया को दिन तैयार का मम्मीत कोरा मेयर मेती मेद के प्रोग्राम के वाहक के फिशुं गे ऐतो है कि हावीर वागुतो, कुड़ा कुड़ा खायरा ऐना के दोंबे, खायाना देखो दिन अतुका हिफाला के मागु के इफ़रातु मामा गेद दांग हिंगागे, कौन में दो है कि वस हावीर वागुतो में को दिन हास्सा कोरणी मामा कैरिया कोसलुमा, मामा गेद दिया मगुमतीगा में देखो दिन ना वोलेटे वेट्टिफो वा फेनिच्चे मिहा हिसाबुन दें कमवाणी किहिनत तो एर निम्माणी तिकुदिंगे मतिकुदिंग मिवाहक कोरिया गेंगोस निम्मालाने के बलालां तत्तम हिरे के अम्मा दोएफा एमवेमा मेद के प्रोग्राम का बैरवेला हुरिहा कुदिन्ना एको मिमा सेक्के फुरि हम कोलो में अति दें हम कोरिम वेस्तत फाहा कोले को ता तिकुदिन्ना प्रोग्राम के तेरें गणेश दिनों में ते कुछ दिन के होना रहता फोन वालों के फुर्सतो हम कौन में वागो तेरे कैस अति होड़ वाले फाइंगे हम दिवे राज्य गाड़ो के टेलीग्राम नंबर की हाथे तीने एकेंग हाय नोए फाहे नोए मे नंबर ते कुछ दिन के होना रहता रिकॉर्ड कॉल लाफ वीडियो कॉल लाफ फोन वाल दें वे मिकमा वाकी वागो तेरने गे कुछ दिन हम कौन में वागो तेरे कैस ते कुछ दिन ना मिकम कॉल ले वेन देंग दत्तक ते कुछ दिन ना कियाल देर नंग मे दुगे मसेक के तो गे तफसील गे फुरतम गुरुआतु के मसेक के गुरुआतु के मसेक के तक बलायरो तीन मसेक का तेंगे फेंग हम कौन इस फाह कॉल लेगो ते हम फुरतम मसेक के दादो गे दादो का मैं वागो ते के ते कुछ दिन ना दत्त में कियाल देर नंग ओडवा लाफा वा रावरे नोने बंजे कियाल दिन ये मा ते कुछ दिन जहनी रावर नो तब बांधी थारतीब कफ़ा रागु का कियाल देंगे हम मार रावरे विया रावर के राग का बंजे विया बादी के राग का देन देवर मसेक के बस माला बस माला मुगा मिवागो ते की दत्त में बगीचा के तेरे के बगेंगोले कोड़ावर के गुड़ी येंगे मैं गोली की तरह का एक अच्छे ही के नंतर लिए फा होना ने हमा वेदान मीह कब्बेस इच्छा कब्बेस ताड़ कब्बेस तो एको तब ते को दिन ना मिली बे लव से बैनो को कं ते को दिन जाने जुमले इंगा डाल देंगे देन तीन वन मसिक्का तो कम योति फी कोई में मसिक्का तो का दत्त क्या आल देर ना लिस्टेंगे लिस्ट क्या आल दिन हम कुरीन दत्त बुने लार ना मिले स्टोन ते कुदिन फाग कॉल लम्बे कौन ताना कुम फिर ना ने चेतो ऐहम वे मा इसा का वेदार ने ओफी हा नोनी स्कूल नोनी गया नोनी बादी गया वस वेदार ने गोता ऐहम दत्त बुना ताने का हो रेची ते कुदिन फाग कॉल लंचेरी देन वाह क्यों में मसिक्का तो का हम ती कितरें को में कुछ को स्कूल लंचेरी काम की दत्त कोरेंस में क्या आल देने वाह क्या के फेशुं दो ऐहम वाह क्या के फेशुं मा गुड़वाफ तिकुदिंग हम विवाहक कोरिया गेंदन चेहनी वाकी लफ्जें ही मना करनु चेहन हमें कन वाक्य के फेशुमा गुड़वालन चेहनेंगे मिहार में ते में दिगे प्रोग्राम के फुरतम बैरिया गुड़ाले फा अस्सलामुअलैकुम
1: अलैकुम अस्सलाम
0: राना
1: बाबा
0: केने हालो
1: अल्हम्दुलिल्लाह रंगालो
0: राना की कोल्लनी
1: प्रोग्राम का बैर वाले
0: प्रोग्राम का बैर वेगे मिहार में ने तो इतुर का में कोरा दो है नो मिया तो आदि मेगाडी का तो
1: बाबा
0: साबोय फिंता
1: मेरे को तो शुभोय
0: किरो तट्टे बोय द इतुर इच्छे नो कंग आदि ओके राणा हिंगा मसे कत दम आद
1: लंबा
0: एम गुरु अत्तम मिदानी इंगे हाइं अलिफं एबोर होरी हा कोरे एम कोंगा कोरे डगाणी
1: हा
0: हिंगा हा गो मसे के बालालो
2: फीको
0: फीकोय मिले बोनी अहम वे मा फीकोय के लिस्ट दत्त कियाल देनंगे ए लिस्टन रणा फाहग कोला देनवी मस बाणम बेणु कुरान एचे तैयार ता मस बाणन दामुता रणा
1: लंबा
0: मस बाणन दामुता ಬಪ್ಪೆಯಕ್ಕ ಮಸ್ ಪಾಡಂದೋ ಎಹಮ ಇಂಗೇಣದ ಎಹಮ ಲಿಸ್ಟುಗ ಮೇದ ಮೆಹರು ಹೆಚ್ಚಿಸಕಿ ದೋಷಿ ಆಫಲು ನಣು ಬಾಲಿಸ್ ಬುಳಿ ಸಂಸ ಎಂಗ್ ಮಿತನು ಕೊಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಸೆ ಪೇಣು ಕುರಾಣಿ ಮಸ್ ಪಾಣು
1: ಬುಳಿ
0: ಬುಳಿ
1: ದೋಷಿ
0: ದೋಷಿ
1: ನಣು
0: ನಣು ದೋಷಿ ಆಫಲು ನಣು ಬಾಲಿಸ್ ಬುಳಿ ಸಂಸ ಎಂಗ್
1: ಎಂಗ್
0: ಎಂಗ್ ಅದಿ ತುರಚ್ಚಿಂಗೆ ಬ ನೇ ಓಕೆ ಎಹಮ್ ವಿಮ ಫುರ್ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕೆ ವರಕ್ಕಾಮಿ ಅಪಿಂಗೆ ರಣ ತೆಮ್ಮಿ ಒತ್ತಿ ವಾಹಕ್ಯೋ ವಾಹಕ್ಯೋ ತಯಾರ್ತ ಎದ್ದು ಹೆಕ್ಕೆ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಕುಡಕುಡ ಖೈರಾ ಎಣಗೆ ದೊಂಬೆ ಖಯಾಣ ದೆಕುದಿನ್ ಅತುಗ ಹಿಫಾಲಾಗೆಂಗ್ ಮಗುಗೆ ಎಫ್ಫರಾತು ಮಾಮಗೆ ಅದ್ದಾಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹೆಗ್ಗೆಸ್ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಮೆಕುದಿನ್ ಹಾಸಕುರಣಿ ಮಾಮ ಕ್ಯಾರಿಯ ಗೊಸ್ಲುಮ ಮಾಮ ಗೆದ್ದೆಯ ಮಗುಮತಿಗ ಮಿದಕುದಿನ್ನ ಒಲಟೆ ವೆಟ್ಟಿ ಫೋವಾ ಫೆಣಿಜ ತೆಂಕಿನ ವಾಣಿ ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗೆ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಕುಡ ಕುಡ ಖೈರಾ ಎಣ ದೊಂಬೆ ಖಯಾಣ್ಗೆ ಅತುಗ ಹಿಫಾಲಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಎಫ್ಫರಾತು ಮಾಮಗೆ ಅದ್ದಾಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹೆಗ್ಗೆವೆಸ್ ಹವೀರು ಆಗೋತು ಮೆಕುದಿನ್ ಹಾಸಕುರಣಿ ಮಾಮ ಕ್ಯಾರ್ಯ ಗೊಸ್ಲುಮ ಮಾಮ ಗೆದ್ದೆಯ ಮಗುಮತಿಗ ಮಿದಕುದಿನ್ನ ಒಲಟೆ ವೆಟ್ಟಿ ಫೋವಾ ಫೆಣಿಜ ತೆಂಕಿನ ವಾಣಿ ಕೇಣಂಗ್ ಹದಾಣಿ ಮೆಕುದಿ ಕೊಂಕುಜ ವಲಟ್ ನೆಗಿ ಖೈರಾ ವಲಟ್ ನಗಾಗೆ ಎ ವಲಟ್ ಗೆ ವೆರಿಫರ ಹೋದ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿದ ಲಂಬ ಎಮ್ಮ.

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकानी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: कड़ी मेंदमंगले वेके जही मैं दिवे ही राज्य क्या डूं